0: अच्छा भाई,
1: एक और
2: US 84 at Collins Camp Road and Wind, Louisiana, Zulu 824-891, ZA 24-891, a white tundra.